आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करे 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: कहते हैं ना कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के, और ये बात एक बार फिर साबित करने आज ग्लासगो में वेटलिफ्टिंग के एरिना में उतरने वाली है निरुपमा देवी और हरजिंदर कौर। भाई जब ये लड़कियां मंच पर आकर वो भारी भरकम वेट उठाती हैं ना, तो सिर्फ वजन नहीं उठता, 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, चाहे वो भारत में हो या यहाँ नॉर्थ कैरोलिना में। पिछली बार भी इन्होंने हमें प्राउड फील कराया था और इस बार भी गोल्ड पर नजरे हैं। तो चलिए हमारे देश की इन वुमेन चैंपियन को चीयर करते हैं और सुनते हैं अगला गाना। गोल्ड जो है इस बार लाना है ऐसा मुझे लग रहा है, एंड गोल्ड किसी को नहीं चाहिए होता है, सबको तो गोल्ड चाहिए ही होता है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

पर वन ऑफ नाइट्स जी हाँ, बॉक्सिंग रिंग से कड़क अपडेट है। आज भारत के 5 मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल के रिंग में उतरने वाले हैं। क्वार्टर फाइनल का मतलब समझते हैं आप, बस एक जीत, सिर्फ एक मुकाबला अपने नाम करना है और देश का एक और मेडल पक्का हो जाएगा। हमारे बॉक्सर्स के पंच में वो दम है कि सामने वाले के डिफेंस को तोड़ दे। रिंग के अंदर बाउट चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हमारे खिलाड़ी हार नहीं मानते। बॉक्सिंग रिंग की इस तगड़ी हीट के बीच चलिए आपके लाइक स्टूडियो का माहौल थोड़ा आज कूल करते हैं और बेहद अच्छा गाना मैं आपको सुनाने चाहूँगा। लाइक बॉक्सिंग और वो जोश, जोश तो चाहिए ना यार, जोश रहेगा तो ही बॉक्सिंग का गेम जो है वह बरकरार रहेगा। ऐसे ही जोश से भरा हुआ एक गाना सिर्फ आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी, पक्का।

आपने एंजॉय किया ये गाना, और अब वक्त है सिनेमा की दुनिया में गोता लगाने का, क्योंकि वो खबर आ गई है जिसका हम सब महीनों से इंतजार कर रहे थे। रणबीर कपूर की मेगा बजट फिल्म रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर कल यानी 29 जुलाई को दुनिया के सामने आने वाला है। सोशल मीडिया पर तो अभी से ही सुनामी आ चुकी है। रणबीर का राम वाला लुक और साई पल्लवी का सीता वाला अवतार, बॉस विजुअल्स देखकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नितेश तिवारी इस बार कुछ ऐसा ला रहे हैं जो इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल देगा। यह अमेरिका के थिएटर्स में भी इसकी एडवांस बुकिंग के लिए क्रेज दिखने लगा है। चलिए इस प्यार भरी अपडेट के बाद सुनते हैं यह अगला गाना। एंड लास्ट टाइम भी जो रणबीर ने कहा था कि विजुअल्स जो है VFX जिसे हम कहते हैं VFX भी बहुत अलग लेवल के रहने वाले हैं एंड शायद इनमें कुछ अच्छे चेंजेस करे हैं। सो लेट्स सी कैसे होता है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

फिल्मों की बात चल रही है तो आपको बता दूं, इस थर्सडे यानी 30 जुलाई को थिएटर्स में एक ऐसी फिल्म आ रही है जो आपको हंसते हंसते लोटपोट कर देगी। मैं बात कर रहा हूँ राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है। राघव को आपने किल जैसी फिल्म में खूंखार विलन के रूप में देखा था जहां उन्होंने डराया था, लेकिन इस बार वो अपने पुराने रंग यानी प्योर कॉमेडी में वापस आ रहे हैं। अगर इस वीकेंड रिगल या AMC जाने का प्लान है तो इस लाइट हार्टेड कॉमेडी को अपनी लिस्ट में रख लीजिए। फिलहाल वीकेंड का इंतजार करते करते इस गाने का लुत्फ़ उठाइए। राघव जुयाल हमें पता है कि कितना अच्छा डांस करते थे और उनकी मेहनत हमने सभी ने देखी है, ऑडिशन से लेकर टा टा टा टा टा टा, ये म्यूजिक मानो राघव जुयाल के लिए बना हो। उस वहाँ से लेकर एक एक्टर बनने का सफर उन्होंने बड़ी मेहनत से तय किया है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: एंजॉय किया आपने गाना, गाना था वाकई में काफ़ी बेहतरीन। अभी तो जुलाई का महीना चल रहा है लेकिन बॉलीवुड वाले ने दिवाली 2026 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। गॉसिप गलियारों से खबर आ रही है कि अगले साल दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर अब तक का सबसे बड़ा फ्लैश आई मीन टू से क्लैश होने की संभावना है। एक तरफ रणवीर की रामायण की चर्चा है और दूसरी तरफ कुछ और बड़े मेकर्स अपनी रिलीज डेट्स लॉक कर रहे हैं। भाई जब दो बड़ी फिल्में एक साथ आती है तो दर्शकों के लिए तो चांदी ही चांदी होती है लेकिन मेकर्स के पसीने छूट जाते हैं। खैर अगले साल की बात अगले साल करेंगे, अभी तो इस साल के इस सुपर हिट गाने का मजा लेते हैं जो इस वक्त चार्ट बस्तर पर राज कर रहा है। एंड गाना जो है ना वाकई में बेहतरीन है, आपको सुनाता हूँ बाद में आपने बताना कि आपको गाना कैसा लगा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham,

0: और जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरे पुराने गाने का रीमेक बन रहा है। रिमिक्स के इस दौर में कभी कभी वो पुराना जादुई एहसास कहीं खो ना जाए, मतलब खो जाता है अक्सर, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मतलब बीट्स अच्छे हैं, गाड़ियाँ चलाते हुए जिम में सुनने में मज़ा आता है, लेकिन जो बात किशोर दा, रफ़ी साहब या आर डी बर्मन के ओरिजिनल गानों में थी, वो आज के रीमेक में कहाँ, ऐसा मुझे लगता है। आज मेरा मन हुआ कि क्यों ना आपको कोई बिना छेड़छाड़ वाला प्योर ओरिजिनल एवरग्रीन गाना सुनाया जाए, लेकिन बाद में पता चला कि जो गाने हैं वो रिमिक्स इतने बन रहे हैं कि कंफ्यूज हो रहे हैं सब लोग। एंड कुछ दिनों के लिए ये ढिंचैक गाने अच्छे लगते हैं, और बाद में जो 90s के कीड़ है या फिर पुराने लोग हैं वो तो रिलेट करते हैं पुराने गानों के साथ। सही कह रहा हूँ मैं या कैसे? सुनते हैं अगला ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी।

0: every restaurant becomes an experience. But Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए

मौसम बहुत हसीन है, वीकेंड की प्लानिंग चल रही है तो सब ठीक तो है, लेकिन एक जरूरी लोकल अपडेट भी सुन लीजिए। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में रैली दरम एरिया में कुछ हिस्सों में तेज गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है, इसलिए अगर आप रात में लेट ड्राइव कर रहे हैं या मॉरिसविल और कैरी की तरफ जा रहे हैं तो सड़कों पर थोड़ा संभल कर गाड़ी चलाइएगा। समर स्टॉर्म्स में विजिबिलिटी अचानक कम हो जाती है एंड सुरक्षित रहिए ताकि आप हर मौसम का मजा ले सके। गाड़ी को ना थोड़ा संभल के चलाना चाहिए, खासकर ऐसे मौसम में, और एक्सीलेटर पर थोड़ा संभल के पैर रखना चाहिए। एक्सीलेटर कम और म्यूजिक का वॉल्यूम ज़्यादा रखो तो बेहतर रहेगा, एंजॉयमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। एक सेफ डिस्टेंस रखना है टॉक्सिक लोगों के साथ एंड अपने अगली गाड़ी के साथ भी, है ना। सेफ डिस्टेंस रखो और हर चीज़ को कंट्रोल में रखो तो सारा कुछ सिंपल सॉर्टेड हो जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स, और सड़कों पर अंधेरा बढ़ चुका है। जितने भी लोग इस वक्त I-40 NC-540 पर है, प्लीज अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल में रखिए। किसी एग्जिट पर जल्दबाजी मत कीजिए। 2 मिनट की देरी लगेंगी बॉस, लेकिन कुछ भी नहीं होता है 2 मिनट लेट होने के बाद। याद रखिए, घर पर कोई बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहा है, आपकी मुस्कान का इंतज़ार कर रहा है। सुरक्षित घर पहुंचिए, डिनर एंजॉय कीजिए, और रास्ते के इस सफ़र में मैं हूं ना यार, लाइक गाने सुना रहा हूँ आपको। आपका इंटरटेनमेंट करने की जिम्मेदारी मैंने रखी है। मैं मिटा पाऊँ आपका स्ट्रेस, बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। रेडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं निर्वाणा नाइट्स। पता है क्या, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। थोड़ी देर हो जाएगी यार, और अब कहाँ कौन सी मीटिंग है या क्या है, घर पहुँचना है ना। तो आराम से चिल कीजिए हमारे शो के साथ एंड एंजॉय कीजिए अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM। रेडियो नायरा, पक्का दिस।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वदा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपकी मूड को रिफ्रेश। कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं एंड गुस्से का जो टाइम रहता है 7 मिनट है ना, वो टाइम के दौरान बस काम रहना सीखिए, क्योंकि उस दौरान हम कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है, क्योंकि हम होश में नहीं रहते हैं, काबू में नहीं रहते हैं। वो टाइम निकलने के बाद जब दोनों भी पर्सन काम हो जाते हैं तो बात करनी चाहिए, वो भी आराम से, क्योंकि ये गुस्से वाला जो टाइम रहता है ना, कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो ये टाइम को संभाल लेना है, उसके बाद जो भी आपको बोलना है आप कह सकते हैं। एंड यू नो कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है यार, काम डाउन रहना है, चील करना है। ऐसा मत करो कि रिश्ता खराब हो जाए लोगों के साथ, रिश्ते बना कर चलो है ना। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

देखते, मतलब जो 7 से 10 का टाइम है आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है ना, ये पता ही नहीं चलता। मेरे प्यारे लिसनर्स बहुत मुझे प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड रेडियो नायरा निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। आप हमारे रेडियो नायरा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल प्ले स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से। कुछ नहीं, आपको जाना है, टाइप करना है रेडियो नायरा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेज के एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज, एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक। शर्त ये बस यही है कि आपका जो नेटवर्क है वो अच्छा रहना चाहिए, दैट्स इट। एंड ऐसा ही प्यार बरकरार रखिएगा। कल मिलूंगा आपको इसी वक्त इसी शो पर और आपके पसंदीदा चैनल रेडियो नायरा पर। सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, एंजॉय कीजिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, अपने अपनों का, एंड बस हमेशा खुश रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

Laugen!

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

ती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल।

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: रेडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
1: Shopping for your next car? LeafCars.com puts everything in one place, so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles, backed by our trusted network of local dealerships. With expert service, convenient locations, and flexible buying options, LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind.
2: Do you desire for it's contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 9193883.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक, प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
0: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition and unforgettable flavors.
2: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
1: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
2: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

गुड इवनिंग रैली धर्म एंड मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। कैसे चल रही है आपकी आज वेनसडे की शाम? 7 से 10 में रहूंगा आपके साथ, मिटाऊंगा आपका स्ट्रेस एंड बनाऊंगा आपके मूड को और भी रिफ्रेश। उम्मीद है आप सबका ये वेनसडे यानी बुधवार बहुत ही शानदार रहा होगा। जो लोग अभी अभी गाड़ियां स्टार्ट कर चुके हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की सबसे बड़ी और गर्व करने वाली लोकल खबर यह है कि रैली को नॉर्थ कैरोलिना का सबसे बड़ा शहर घोषित किया गया है और पूरे अमेरिका में 15th नंबर पर हमारा ये शहर है। तो बॉस, प्राउड फील कीजिए कि आप इतने बेहतरीन शहर में रह रहे हैं। अगले 3 घंटे आपके सफर को म्यूजिकल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है एंड सुनते हैं इस ब्यूटीफुल शाम का यह पहला गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Hi, Carrie. Get ready for Dosa Bundi. Discover our signature variety dosas, including colorful carrot dosa, beetroot dosa, and more. Made with fresh natural vegetables and packed with flavor. Refresh your day with our cold-pressed juices and enjoy our delicious sandwiches made with fresh vegetables, paneer, and homemade sauces. At Dosa Bundi, every dish is carefully prepared with fresh ingredients to nourish your body and delight your taste buds. Join us every Saturday and Sunday from 8:30 a.m. to 2 p.m. and Wednesday through Friday from 5 p.m. to 10 p.m. We look forward to welcoming you
1: to 4101 NC Highway 55, Cary, North Carolina 27519.
2: Dosa Bundi, authentic flavors, inspiring journeys made with love.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: लाओगे।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM LG4, 49 AM, 99.9 FM LG3, 4 Telugu, Naira Fame. मैं हूँ आपके अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यूज। Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week through many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। पक्का देसी।

अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD 4 for 90 AM and 99.9 FM HD 3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक. वेल मॉरिस विले रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है. इंट्रोड्यूसिंग रचा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद. अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्ट्रीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून. राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 और 4090 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून्स एंड टॉक। पता है बहुत थकी आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest refinancing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 919-388-3838.
1: Shopping for your next car? LeedsCars.com puts everything in one place so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles backed by our trusted network of local dealerships with expert service, convenient locations, and flexible buying options. LeedsCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind. LeedsCars.com.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: ये माइंड ब्लोइंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 449 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूम सेंटर। वेल माय ट्रायंगल में फोर्थ फ्राइडे इन टाइम सेलिब्रेट होने वाला है। जॉइन अस फॉर द टीडी इज फोर्थ फ्राइडे इन जुलाई एंड गेट रेडी टू डांस एंड टैगिंग ऑन द स्क्वायर। The fabulous Jewels will be performing live at the Plaza. Slip into the rhythm and Carolina shags a smooth, easygoing partner dance on right. Here in the Southern property, match the beach music in good beat. Whether you are a seasoned dancer or just want to try, the square will be filled with the friendly faces, lively tune, and plenty of fun. Come out, grab and partner, and let the music move to you. Lal kahi jaiyega nahi, sun rahi hai Monica ke saath Radio Nayra, pata desi, pata local.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशक्ल।

0: Awesome Blossom Ghana, aapne suna on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4, 49 AM, 99.9 FM, LG3 for Telugu, Naira se main hoon aapki apni Monica, aur aap sun rahe hain Triangle Rooms and Talk.
1: हमारे ट्रायंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है. कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन जुलाई. कांट मिस द नाइट अंडर द लाइट. Known as Mr. Saturday Night, Party is set to deliver an unforgettable show packed with the chart-topping and topping it is high and energy performances. Whether you are backbone in wound for the summer or just looking for the perfect night out, this is your excuse to grab your friend and make it night to remember. मजा आने वाला है. इसकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पता देसी पता लो.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

0: Gaana aap main enjoy kiya on 101.9 FM 99.9 FM LG 4:40 AM and 99.9 FM LG 3:40 Telugu Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangles and All.
1: Well, हमारे ट्रायंगल में आर्ट इन द पार्क सेलिब्रेट होने वाला है बहुत जल्दी. 70 जूरीड आर्टिस्ट लाइन द स्ट्रीट नेक्स्ट टू द पार्क इन डाउनटाउन बॉल्विंग रॉक सेलिंग आर्ट ऑफ द ऑल फैशन वेदर इट्स ज्वेलरी फर्नीचर लॉन ऑर्नामेंट पॉटरी टेक्सटाइल पेंटिंग और फंक्शनल आर्ट यू आर लुकिंग फॉर आर्ट इन द पार्क हैज इट. All of the art in the show is hand-selected by committee of local experts as fine as art and handcraft. The annual art in the park is seasonal event held once in a month. The remaining art is park day held in August and in September up to October. Filhal ke liye jaiye ga nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Naira, pakka desi, pakka local.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 4090 AM एंड 99.9 FM HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूंस एंड टॉक, उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक, हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। नाइन जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट। नाइन जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

वेलकम है ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉप कहां धारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

यह ऑसम गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4 for the 90 AM and 99.9 FM, HD3 for Telugu, Naira Fame. मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डोंट एंड टॉक. वेल, हमारे ट्राइंगल में ड्रॉविंग रॉक चैरिटी हॉर्स शो हंटर जंपर फोर्थ डिवीजन सेलिब्रेट होने वाला है. द हंटर जंपर डिवीजन ऑफ ड्रॉविंग रॉक चैरिटी हॉर्सेस शो फोकसेस ऑन फीट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ विद द फोर्थ जंप ऑफ द टर्न दैट हॉर्सेस एंड राइडर्स हैव टू नेविगेट. This particular part of the show serve as preliminaries and final that show shortly after. Participants decorate their stable for added flair. Food truck will be offered delicious treat and vendors their theme wares. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पका देसी पका लो.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

Is the Monkey Dar Gaadi Kebab one more time? Welcome here on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 for 90 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu. Naira se main hoon aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Tunes and Talk. ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 415.40 स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉर्थ विक्सबोरो स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. फील द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉर्थ विक्सबोरो. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-speed racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Naira, pakka deshi, pakka local.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4, 49 AM, 99.9 FM, HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gane, sundariye Monica ke saath Radio Naira, pakka desi, pakka local.

माहौल गाना था ना, एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली, ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है। हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu Radio Naira सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय, ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स ऑन टॉप, पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे, बाय बाय। Oh, oh, oh.

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: ट्यून अप योर स्पाइडर सेंस बिकॉज स्पाइडरमैन नाइट इज हियर विद द नॉर्थ कैरोलिना करेज दिस फ्राइडे जुलाई 31st. Bring the whole family to First Horizon Stadium, where Courage will face off against Orlando Pride at 8 p.m. It'll be a super fun night for fans of all ages, with Spider-Man themed activations, fun for the little ones, and a free Spider-Man Funko Pop for the first 500 fans to arrive. Don't miss Spider-Man Night with NC Courage. Tickets at tickets.nccourage.com.
2: Hi, Carrie. Get ready for Dosa Bundi. Discover our signature variety dosas, including colorful carrot dosa, beetroot dosa, and more. Made with fresh natural vegetables and packed with flavor. Refresh your day with our cold-pressed juices and enjoy our delicious sandwiches made with fresh vegetables, paneer and homemade sauces. At Dosa Bandi, every dish is carefully prepared with fresh ingredients to nourish your body and delight your taste buds. Join us every Saturday and Sunday from 8:30 a.m. to 2 p.m. and Wednesday through Friday from 5 p.m. to 10 p.m. We look forward to welcoming you
1: to 4101 NC Highway 55, Cary, North Carolina 27519.
3: Dosa Bandi, authentic flavors, inspiring journeys made with love.
4: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रचा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
5: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

0: नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल। नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए

नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अर्पित, और आपके इस सफर में जो है इधर उधर की बातें में आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा क्या बिल्कुल ही स्पेशल नहीं है। ये ना बस वही रैंडम बातें करेंगे, जो मन करेगा करेंगे, लेकिन मैंने सोचा है आज हम थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं। आज हम बातें करेंगे उन लोगों की जिन्हें देखकर बचपन में हम अपनी माँ की गोदी में छुप के मुंह छुपा लिया करते थे, जिनके एक डायलॉग पे पूरा सिनेमा हॉल में सन्नाटा फैल जाता था। जी हाँ, आज की बात है हिंदी सिनेमा के विलन्स की। ग्रेट विलन्स नहीं, जस्ट विलन्स। कोई भी विलन छोटा बड़ा नहीं होता। हम सब की बात करेंगे, चुन चुन के निकालेंगे। सोचो जरा, हीरोज तो हमेशा याद रहते हैं, उनके गाने बजते हैं, उनके पोस्टर्स लगते हैं, पर असली मजा कब आता है? जब विलेन स्क्रीन पर एंट्री लेता है। वो धमाकेदार एंट्री, वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो बताता है कुछ बड़ा होने वाला है, और फिर वो एक डायलॉग जो आज भी हमें पूरा याद है। चाहे हमें मूवी का नाम याद ना हो, पर डायलॉग जरूर याद है। सोचे कितने लोग हैं जिन्हें कितने आदमी थे, सुनते ही गब्बर याद आ जाता है, पर मूवी का पूरा प्लॉट भूल गए होंगे। यही तो मैजिक है विलेन्स का दोस्तों। वो सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं थे, वो एक पूरा मूड, एक पूरा एरा क्रिएट करते थे। अमजद खान का गब्बर, अमरीश पुरी का मोगैम्बो, अनुपम खेर का डॉक्टर डैंग, हर एक ने एक अलग ही फ्लेवर दिया सिनेमा को। तो आज हम इन्हीं कैरेक्टर्स को याद करेंगे, उनके आइकॉनिक डायलॉग्स, उनके अंदाज, और वो कैसे हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स का इतना बड़ा हिस्सा बन गए। और हाँ, ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया का सेशन नहीं होगा, थोड़ा मस्ती भी करेंगे, क्योंकि जितना देर हमें ये विलन्स देते थे स्क्रीन पे, आज उतना ही हंसी आती है उनके स्टाइल को देख के, उनके स्वैग को देख के, और उनके ओवर द टॉप डायलॉग्स याद करके। तो दोस्तों, अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, पुरानी यादों का डब्बा खोल लीजिए, क्योंकि आज के एपिसोड पर पूरी तरह डेडिकेट है हमारे पसंदीदा विलन्स को। वार्निंग देना जरूरी है, बीच बीच में आपको खुद बोलने का मन करेगा मोगैम्बो खुश हुआ या कितने आदमी थे, तो बिंदास बोलिएगा, हम सब यही करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार सवर इस अतरंगी, अद्भुत, अविश्वसनीय गाने के साथ।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लो।
1: वेलकम बैक, मैं हूं अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। और आज हम बात कर रहे हैं अपने बॉलीवुड के विलन्स के बारे में। ऑफ कोर्स अगर आपके भी अपने फेवरेट हैं और फेवरेट नहीं हैं या कुछ ऐसे विलन हैं जो आपको लगता है ये अंडररेटेड रह गए, तो फ़ोन करके बताइए, दूसरों को समझाइए। फ़ोन नंबर है 919-999-8595। और पहले जो शख्स हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ वो है हमारे कुलभूषण सिन्हा साहब, शान के शकाल भाई साहब। जब विलेन उनका स्टाइल इतना स्मूथ था, इतना कूल था कि बिना कुछ बोले वो डेंजरस लगते थे। लाइक एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कितने क्यूट से थे, ठीक है, बाल नहीं है, बड़ी बड़ी आईब्रोज हैं, बंद गले का कोट पहना हुआ है सफेद रंग का, चेहरे पे मुस्कान है, मोटी मोटी बोहे हैं। ऐसा लगता था कि भाई बेटी के बाप हैं जो बस बारात का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। लेकिन क्या कैरेक्टर निभाया, डायलॉग्स ज्यादा नहीं थे उनके, बस वो याद है सर पे जब वो उंगली अपनी तर तर तर तर तर तर तर तर फेरते थे, यार गजब था, क्या आइकॉनिक था। और आई एम श्योर भैया पैसे वाले रहे होंगे, जो शकाल था वो बहुत पैसे वाला था, जस्ट गलत संगत में फल गया भाई। आइलैंड में नीचे जाके इतना बड़ा उसने हेडक्वार्टर बनवाया, कैन यू इमेजिन, उस आइलैंड पे कोई है ही नहीं एंट्री, आपको बोट से, फेरी से, हेलीकॉप्टर से सीमेंट सरिया लेके जाना है, वर्कर्स लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने वो बनवाया तो पैसा तो बहुत होगा, राइट। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर करा, ठीक है, हायरिंग कर कैसे रहे थे भाई, आइलैंड से तो निकल नहीं रहे हो तो भाई आउटसोर्स कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इतने लोगों की हायरिंग हो रही है, हायरिंग हो रही है तो ला कैसे रहे हो सबको हेलीकॉप्टर से भाई, उस टाइम के अंदर हेलीकॉप्टर से ला रहे होगे, मैं तो भैया चला जाता, आई वाज लाइक डूड भाड़ में गई मम्मी पापा से 2 साल में 10 साल में मिलना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर की एक राइड मिल जाएगी, मजा आ जाएगा। चलो वो ठीक है, गार्ड ला क्यों रहे हो इतना, जब पॉइंट ऑफ एंट्री सिर्फ एक ही है, हेलीकॉप्टर से ही दुश्मन आएगा तो भाई बाहर खड़ा कर दो ना, 2-4 लोगों गोली मार देंगे, हेलीकॉप्टर उस टाइम पे एक गोली से ही खत्म हो जाते थे, अंदर भी गार्ड बैठे हुए हैं। और जस्ट इमेजिन कितना खर्चा आता होगा, माना ठीक है उन्होंने अपने जनरेटर लगा रखे हैं, लेकिन पीछे शार्क टैंक लगा हुआ है, शार्क टहल रही है उसके अंदर, एक्वेरियम बना रखा है पूरा, कितना खर्चा आया होगा, बहुत रीस रहे होंगे शकाल साहब। वही होता, ज्यादा पैसा मिल जाता है ना दिमाग थोड़ा ऐसे हो जाता है, बुरी संगत का सर हो जाता है। बट क्या मूवी थी यार, क्या कैरेक्टर निभाया, मुझे तो बहुत पसंद आया, शान मूवी आई है। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साहब तो ठीक हैं, लेकिन यार जो काम कुलभूषण सिन्हा साहब ने करा है यार वो कोई और नहीं कर पाएगा। आपका क्या ख्याल है, फोन करिए बताइए, नंबर है 919-999-8595।

0: and Sanvi Meghana all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: Right here at Auto Park Honda and Cary, where we keep it simple. You get the Honda you want at a price you'll love, all with no games and no gimmicks. Get real value with every new Honda purchase, like no-cost oil changes, loaner cars, and free towing. It's how we've saved our customers thousands for over a decade. So forget the games and drive happy with a team that puts your needs first. Auto Park Honda and Cary and AutoParkHonda.com. It's easier here.
3: Visit AutoParkHonda.com for details.
4: Shopping for your next car? LeafCars.com puts everything in one place so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles backed by our trusted network of local dealerships with expert service, convenient locations, and flexible buying options. LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind. LeafCars.com.
5: Options are here. Radio Nara, 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM. Pakka Desi, Pakka Local.
6: वेलकम बैक. और वेलकम बैक करते ही मुझे मालूम है उनमें से काफ़ी लोग मुझे जज कर रहे होंगे. वेल क्यों नहीं करें भाई, हम हैं मैंगो पीपल, आम आदमी. हमारा काम होता है जज करना, तो मुझे जज कर रहे होंगे क्योंकि नामकरण ले लिया मैंने सिन्हा. कुलभूषण खरबंदा साहब थे हमारे शान मूवी के अंदर, सिन्हा साहब नहीं थे, बट समहा मुझे लगता है कुलभूषण सिन्हा कितना क्यूट लगता है उनपे नाम, राइट? कितना क्यूट लगता है. बट आप सोच रहे होंगे यार रेडियो चला रहा हूँ, रेडियो पे आरजे है, कम से कम मैं सही तो इन्फॉर्मेशन दे सकता था. बट ठीक है ड्यूड, मैंने पहले भी बोला है मैं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हूँ, गलतियाँ करता हूँ. दैट ऑल्सो शोज कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, गलतियाँ होती हैं. फिर आप ये सोचते होंगे कि ड्यूड शो कर रहा है, कम से कम होमवर्क करके तो आता ना, स्क्रिप्ट कुछ तो लिख के लाता सामने, गूगल कुछ कर लेता. ड्यूड आलस, अगर लोग जज कर सकते हैं तो मैं आलस भी हो सकता हूँ. और होमवर्क ड्यूड, अगर होमवर्क ही कर रहा होता स्कूल टाइम के अंदर तो मैं यहाँ थोड़ी ना बैठा होता. एनीवेज ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, गलतियाँ अभी और होती रहेंगी और आप मुझे करेक्ट करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. कम से कम इंट्रैक्शन मेरा ऐसे ही बना रहेगा, गलतियाँ करके ही लोग मुझसे बात कर रहे हैं. आई एम हैप्पी विद दैट. एनीवेज ठीक है, इसे से ही ध्यान आया जिस तरह ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है. मुझे लगता है एक और मूवी आई थी जिसके अंदर एक विलन थे जो मुझे लगता है कि विलन से कम, ऐसा होता है ना कि आप कहते हैं यार ऐसा कहीं दोस्त मिल जाए मेरा, मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ के अंदर ऐसा विलन होता. मुझे दोस्त नहीं चाहिए, मुझे वो विलन चाहिए मेरी लाइफ के अंदर. वो विलन जिसने मुझे लगता है शो के अंदर उसने कहा डूड मैं एक्टिंग कर लूंगा, स्क्रिप्ट छोड़ो यार, मुझे बताओ कब आना है. जी हाँ, ये थे हमारे ग्रैंड मास्टर गोगो. क्या आइकॉनिक लाइंस थी, क्या आइकॉनिक एक्सप्रेशन थे. मुझे लगता है उनकी ड्रेस भी उन्होंने खुद ही बना ली होगी, भैया ये कपड़े हैं देख ले, प्रॉप्स क्या कर सकता है, क्या पहन सकता है, वाओ. और उन्हीं के शो से मुझे लगता है इंस्पायर था हमारा क्रूर सिंह का कैरेक्टर. क्या उनकी बड़ी सी बोहें और बाल बिखरे हुए पानी पे भिगे हुए, पीछे उन्होंने फ्रॉक क्या पर्दा पहना हुआ है लाल कलर का, आया हूँ तो कुछ तो लेके ही जाऊँगा, आंखें निकाल के गोटियाँ खेल रहा हूँ मैं, क्या डायलॉग्स थे यार, क्या मज़ेदार डायलॉग्स थे. और उनके ऊपर उनके साथ आमिर खान और सलमान, चलो सलमान खान तो बैकग्राउंड के अंदर ही थे क्योंकि जब हाँ वो आमिर खान को साहब को ही बोलते थे कि भाई आप ही बोलिए, और वो अच्छा भी था. दोनों की एक्टिंग जो थी ना बड़ी मज़ेदार थी. पता है संभव मुझे उन दोनों की एक्टिंग, ऑफकोर्स हम जा रहे हैं बिल्कुल अलग हमारे टॉपिक से क्योंकि शो का नाम है शो की जो आत्मा उसको भी जिंदा रखना है. तो ये जो जुगलबंदी थी पूरी मूवी के अंदर अंदाज अपना अपना में आमिर खान और सलमान खान की, समहा वो जुगलबंदी एक और मूवी में है जो बाद में आई है. क्या लगता है आपको कौन सी मूवी हो सकती है? छोड़ो आप क्या बताओगे मुझे, मैं ही बता देता हूँ, आप सोच सकते हैं. मुझे लगता है जो आई थी आपकी मूवी गरम मसाला, अक्षय कुमार एंड जॉन अब्राहम. जॉन अब्राहम ने उस मूवी के अंदर क्या एक्टिंग करी है यार, लिटरली कुछ भी नहीं, लाइक इट वॉज नाइस एक्टिंग. मतलब वैसे देखो तो यार क्या फनी एक्टिंग करी है, बट वो बहुत वैसे ही फनी है कि डूड क्या कर रहा है यार ये. दैट इज वेरी सिमिलर टू सलमान खान. मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह अंदाज अपना अपना के अंदर सलमान खान साहब नहीं कर पा रहे थे उस हिसाब से ना कि यार कॉमेडी टाइमिंग एंड ऑल जो उनकी समहाउ फिट बैठ रही थी ना करके भी, वो सेम चीज गरम मसाला में हो रही थी. और हम वापस आते हैं घूम फिर के अपने ग्रैंड मास्टर गोगो पे. पर ये जो कैरेक्टर था, ये जो विलन थे ना, ये मुझे लगता है कि हाँ मुझे मेरी लाइफ के अंदर चाहिए. मुझे दोस्त वोस्त नहीं चाहिए, मुझे साइड किक नहीं चाहिए, मुझे ये विलन चाहिए. यार क्या फनी थे यार, इनके साथ लाइए कुछ वो भी हो जाना, लड़ाई या मुठभेड़ या उधार ले लो, तो यार बहुत मजे में, अच्छे अच्छे में मजे में इनके साथ लाइफ कटेगी. आपका क्या ख्याल है? फोन करिए, घुमाइए, नंबर है 9199998595. तब तक मैं ढूंढता हूँ और कौन से छुपे हुए, ये तो थे नोन, अब मैं कोशिश करूंगा छुपे हुए करेक्टर्स ढूंढने की जो हम भूल गए हैं. याद तो हमें था लेकिन हमारी यादों की परतों में दबे रह गए, तो उनको मैं ढूंढ के लाता हूँ. तब तक सुनिए अगला गाना.

0: Discover wellness through the richness of Indian traditions. Stay tuned to Healthy Rehne Ke Liye Musical Parampara on Radio Naira.
1: अरे याद है जिनके घर में केबल नहीं होते थे, जिनके यहाँ सिर्फ डीडी चैनल होते थे, उसी पे रिलाई करते थे, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को कुछ आइकॉनिक मूवीज आती थी, तीन चार ही थी जो रिपीट होती थी, वो माम था यही आनी है। एक आती थी आपकी कर्मा, एक आती थी आपकी रोजा, और एक आती थी तिरंगा, और बाद में क्रांतिवीर भी आनी शुरू हो गई थी। तो तिरंगा मूवी याद है क्या मस्त थी ना, उसके अंदर हमारे जो आइकॉनिक, जो मुझे बहुत सही लगते थे विलेन सा, क्या थे वो, प्रलयनाथ गेंडास्वामी। यार क्या सही थे ना। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता था कि जितने विलेंस होते हैं ना वो बंद करे या कोट ही पहनते हैं, तो मेरे घर में जितने फूफा जी मास्टर जी ने समहाउ मैं बायस्ड हो गया था कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो। एक तो फूफा मास्टर जी ऐसे ही होते हैं, यू नो लाइक लास्ट, अगर आपने लास्ट मेरा शो सुना है तो उसके अंदर शादी के अंदर जो कांड करने वाले होते हैं वो यही लोग होते हैं। तो समहाउ मुझे लगता था कि यार ये बंद करे या कोट जो पहन रहे ना, यहाँ कुछ मामला गड़बड़ है, दया दरवाजा, मामला गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दो, उस टाइप का। एनीवेज जो ये गेंडास्वामी साहब थे यार क्या सही थे यार। एक तो उनकी हंसी आय हाय हाय, और जो चेहरा खिल के आता था ना जब वो हंसते थे, जब वो बात करते थे बिल्कुल लॉजिक से उधर, बिल्कुल लॉजिक भी मुंह फेर लेता था कि भाई क्या हो रहा है यार। वो याद है जब वो तीन मिसाइल छोड़ने वाले थे और मिसाइलें उड़ती नहीं है क्योंकि हमारे जो ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह होते हैं वो फ्यूज निकाल लेते हैं, राइट, एक हाथ से छोटे से फ्यूज होते हैं वो लेके निकल लेते हैं, और वो बात कर रहे हैं जो अगवा करे हुए साइंटिस्ट होते हैं उड़ क्यों नहीं रहा है, और वो साइंटिस्ट वहाँ पे 10,000 जो बटन रखे होते हैं रंग बिरंगे वो ऊपर नीचे जल रहे होते हैं, वो कहते हैं ट्राई कर रहा हूँ, शायद इसको बजाज स्कूटर की तरह थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, पेट्रोल कम हो गया, उड़ नहीं रहे। क्या सीन था यार, क्या फनी था यार गेंडास्वामी। बट एनीवेज ये मुझे बहुत सही लगता था, और इससे मुझे याद आ गई ये मूवी मुझे दोबारा देखनी होगी यार, मुझे बहुत सही लगती थी मूवी, क्या सही थी ना अपने टाइप की स्पाई मूवी की। वो कोड है, झाड़ी हटाओगे तो होगा, वो गुफा खुलती थी, और उसके बाद वो खबरी लाल थे जो टेलीविजन डीडी न्यूज रिपोर्टर की तरह खबरें दिया करते थे, आज के मुख्य समाचार ऐसे हैं, गेंडास्वामी निकल चुका है। अरे यार मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। नाना पाटेकर साहब भी थे, उनका यंग एंग्री मैन टाइप का रोल था जो भी था, लेकिन राजकुमार साहब और गेंडास्वामी की जो केमिस्ट्री थी ना, जो राजकुमार साहब उनके जो डर था, उनका जो प्रभार, जो भी उनका वजन था वो एकदम कम करते थे हंसते हंसते। अरे गेंडास्वामी तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारी फ्लाइट के फ्यूज हमने निकाल दिए, मिसाइल के फ्यूज। एनीवेज अगला गाना सुनते हैं, तब तक मैं सोचता हूँ और ढूंढ के लाता हूँ एक और विलेन।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, to the signature soul dal bukhara.
1: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
2: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
4: मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे थोड़ी हेल्प करिए। क्या जितने भी विलेन होते हैं ना मूवीज के अंदर, स्पेशली जो 90s की मूवीज आई थी जो इंडिया को खत्म कर देना चाहते थे, मूवीज होती थी, प्रलयनाथ है, डॉक्टर डैंग है, मोकैम्बो, शाका, जो भी हैं, भयानक रिसोर्सेज हैं, लॉयल है लोग। ये जो वो थे हमारे मोकैम्बो साहब, वो उबलते तेजाब में सिर्फ दिखाने के लिए कि कितने लॉयल हैं ये आदमी मेरे, उन्हें कुदवा देते थे। What a waste of resource, कुदवा दिया उसे, वो कूद भी गया। इतने लॉयल हैं, पैसा है, जज्बा है, मंसूबे हैं, हिम्मत है, तब भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लगे रहते हैं नॉन स्टॉप, पूरी जिंदगी अपनी निकाल दी, 60-70 साल लगे हुए हैं अपने इरादों को पूरा करने में, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और हीरो आता है 20-25 साल का, पता भी नहीं है उसे कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन वो उन्हें मार मूर के उनके मनसूबे में पानी फेर देता है। क्यों? रीजन मालूम है? नहीं, ये रीजन नहीं है कि उनके मंसूबे खराब थे, उनकी नीयत खराब है, नहीं, वो तो हमारा परसेप्शन है। सही और गलत तो ह्यूमन का वो है आउटलुक कि क्या गलत है क्या सही है। रीजन मैं बताता हूं जो मुझे लगता है रीजन। हीरो क्यों सक्सेसफुल होता है और विलेन सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है? हीरो सक्सेसफुल इसलिए होता है क्योंकि हर कामयाबी के पीछे, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हीरो के पास हीरोइन होती है, विलेन के पास हीरोइन होती ही नहीं है। अगर हीरोइन होगी भी तो वो उसे छोड़ के निकल चुकी होती है। कभी दिखाया किसी के अंदर की तेजा है और मोना डार्लिंग है, और मोना डार्लिंग एंड तक से टिकी हुई है कि उसे मार रहे हैं, शी इज लाइक नहीं मेरे छोड़ दो मेरे उसको, नहीं वो तो निकल लेती है प्रतिकली से कि भैया तेजा गया तो मैं भी जा रहा हूँ। सच्चा प्यार नहीं मिल पाता उसे बेचारे, एक तो प्यार नहीं मिला सच्चा, उसके ऊपर से वो इतनी मेहनत जो उसने सपने देखे थे वो भी पूरे नहीं हो पाए, और एंड के अंदर हम तारीफ कर रहे थे हीरो की। क्या वो है यार, हिपोक्रेट हम लोग। एनीवेज, मैं अगला गाना, अरे यार टाइम निकल रहा है, ठीक है मैं गाना थोड़ा चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे एक गाना आपको सुनाना है, और सुनाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे फ़ोन करके बताए कोई कि ओ क्या कर दिया मैंने, कुछ तो कर दिया, मुझे नहीं पता गाना बजेगा भी नहीं बजेगा। एनीवेज कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। एनीवेज, मैं जो गाना बजाना चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ कि वो मुझे कोई बताए कि वो गाना किसी ने सुना है या नहीं सुना है, राइट? क्योंकि ये वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग है जो मैं अपने दोस्तों को सुनाता हूँ, और वो दोस्त इतने कमीने हैं, दे आर लाइक कि जब भी मेरे हाथ में ब्लूटूथ या फ़ोन होता है वो छीन लेते हैं, क्योंकि दे आर लाइक बॉस ये गाने मत ही चला। बट मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे यहाँ जिन्होंने गाना सुना होगा और जिनका ये फेवरेट गाना हुआ, तो प्लीज़ कोई तो मुझे फ़ोन करे, बताओ, मुझे अश्योरिटी दो कि मेरे गानों की चॉइस भी अच्छी है। Well, I am really doubtful कि मैं वो गाना बजा पाऊंगा इस सेकेंड. मुझे अगले गाने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान ने तकनीकियां तो बना ली हैं, डेवलपमेंट कर लिया है, टेक्नोलॉजी बना लिया है, लेकिन यही टेक्नोलॉजी हमारे पतन का कारण बन रही है, जो आपको कभी कभार यदा कदा भी हमारे शो में देखने को मिल जाता है जब गड़बड़ियाँ होती रहती हैं. तो एनीवेज, मैं चाहूँगा कि मैं आपसे अराउंड एक मिनट तक और बातें करता रहूँ, ताकि ये शो मैं कंटिन्यू कर सकूँ किसी तरीके से और गाने मैं स्मूथली बजा सकूँ. वेल, लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है, क्या बचता है इस टाइम पे.
5: You're listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham,

0: ऑलराइट, तो मैंने फिगर आउट कर लिया है, और अगला गाना जो आएगा वो गाना आएगा जो मैं चाहूंगा कोई तो हो उस गाने का फैन, या एटलीस्ट किसी ने वो गाना सुना हो, अप्रिशिएट करता हो उस टाइम के गाने को। वैर उस गाने की तरफ हम जरूर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले विलेंस की बात हो रही है, और डॉक्टर डैंग की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। याद है कर्मा मूवी के अंदर अनुपम खेर साहब का वो गोल ऐनक, और वो जो थप्पड़ पड़ता है, उस थप्पड़ की गूंज, ऑफ कोर्स यार अगर खाली इतना बड़ा, एक तो सेल है उनका जो कोठी जो होती है ना कैद खाना, इतना बड़ा उसका कैद खाना है, उसके अंदर गूंजेगी आवाज़, कुछ है थोड़ी ना, गूंजनी ही है। और क्या मस्त था ना जब वो छुड़ाने आते हैं उनके आदमी, और कहते हैं डॉक्टर डैंग डॉक्टर सैम आपको लेके ने पीछे वाले गेट के अंदर वो आदमी आ गए हैं, और वहाँ पे उसी को गोली मार देता है। डूड विलेंस क्या सही थे ना, दे नो कि उनकी लॉयल्टी कितनी है, आप बाकी लोगों के सामने अपने लोगों को मार रहे हो, बाकी लोग फिर भी आपके साथ खड़े हुए हैं। ये तो भैया आई डोंट नो क्या है, कुछ खिला पिला के वशीकरण करा गया है, क्या करा गया है आई डू नॉट नो, बट यार लॉयल्टी जो फैन बेस था डॉक्टर डैंग का वो मस्ती था यार। लेकिन क्या सही था ना, कहाँ कहाँ वो जाके अपने वो बना रहे हैं और लगे पड़े हैं किसी तरह इंडिया ख़त्म हो जाए, ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। और जैसे इमेजिन हर विलेन के पास हेलीकॉप्टर है, AK-47 है, 500-600 लोग हैं जो बिना बात के अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, और एक लुक्खा सा 20 साल का टपोरी आदमी आएगा और पूरे प्लान की वॉट लगा के चला जाएगा, गजब। बट एनीवेज, तो अगला गाना बजने वाला है, आई होप मैं बजा पाऊंगा, बजाऊंगा बिल्कुल, आज वो बजा के रहूंगा, नहीं बजेगा। और प्लीज मुझे कोई तो बताओ फोन करके कि किसी ने गाना सुना है और किसका फेवरेट है। नंबर है 9199998595, व्हाट्सएप भी चलेगा, मिस कॉल भी चलेगी, बस कोई तो बताए।
1: आज की शाम उनके नाम जो करते हैं क्या लव लव

All right. तो एक एक एक भी फोन नहीं आया, एक भी मैसेज नहीं आया. Well, that makes me feel very good कि I have a very acquired taste. I know, सबका नहीं होता है यार, it's a God gift, हर एक का नहीं होता है. But don't feel sorry about yourself. कभी ना कभी आपको भी अच्छे लगेंगे गाने, हो सकते हैं. बस मुझे एक ही डर है कि आज मुझे घर में एंट्री मिल जाए. गाना चलाने के बाद मुझे मना करा गया था. आई एम जस्ट होपिंग कि मुझे घर में एंट्री मिल जाए, अगली बार रेडियो शो पे आने दिया जाए. आज जब मैं गाड़ी लेके निकलूं तो जो होमलेस पीपल होते हैं, वो कुछ मांग रहे होते हैं, वो अभी भी मुझे लाइक समझे कि मुझसे कि मैं कुछ उन्हें दे सकूं. एनीवेज, हम कहाँ थे. बाय द वे यार, ये गाना अच्छा था यार. उसके अंदर बीच में दो चार लाइनें थी ना, ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना. अमेजिंग ट्यून है यार, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है. आमिर खान लव लव लव मूवी नहीं देखी है तो मत देखिएगा यार, ऐसी कुछ खास नहीं है. बट हाँ, आमिर खान और जूही चावला की उन दिनों की मूवीज हैं जब उनकी लाइन से फ्लॉप हुई थी मूवी. बस एक मूवी हिट हुई थी, हम कौन सी, क्यामत से क्यामत तक. उसके बाद जो लाइन से फ्लॉप मूवी हुई है आमिर खान की, 10-12 शायद, उसके बाद सिर्फ दिल आई थी जिससे उनका करियर रिवाइव हुआ. किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि दिल अगर मूवी हिट नहीं थी तो दे वर डन. उनके पास कोई मूवी नहीं थी और उन्होंने छोड़ दिया था कि हाँ अब कुछ होने वाला नहीं है मेरा इंडस्ट्री के अंदर. बट अच्छी केमिस्ट्री थी, गाने अच्छे थे इसके अंदर, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं इस मूवी के गाने. अगर मैं कई बार बजाता रहूँगा तो हाँ, अगर आप रेडियो बंद नहीं करेंगे तो आपका भी टेस्ट एक्वायर हो जाएगा. बट ठीक है, मैं ये जुल्म नहीं डालूंगा आप पे. बट हाँ, ये गाने यार अच्छे होते थे ना ये उस टाइम के. याद है 90s के अंदर जो गलियाँ होती थी हमारी, जो शहर होते थे, जब जगराते हो रहे हैं या किसी का फंक्शन हो रहा है शादी का, लाइक यू नो नॉट मेन शादी बट शादी से पहले का संगीत हो रहा है या माता की चौकी रखी है या कुछ भी हो रहा है, और स्पेसिफिकली जब आपके बोर्ड के पेपर हो रहे होते हैं तब ये गाने बज रहे होते हैं दूर गलियों के अंदर और आप कोई सुन रहे होते हैं. ये ऐसी फीलिंग आती है मुझे गाने सुन के. एनीवेज, तो हम बिल्कुल भटक चुके हैं अपने जो टॉपिक था. बट भटकना ही तो काम है यार, चाहे रतलाम की गलियों में भटकें या यहाँ रेडियो में भटकें. भटकेंगे तभी तो नए रास्ते ढूंढेंगे, तभी तो नए नए कहानियाँ बनती हैं. चलिए अगला गाना बजाते हैं जो आपके मतलब का है, आपके टेस्ट का है. वेल, आप ही खुश होइए.

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

ऑलराइट, ठीक है। अब मैं जिस विलेन के बारे में बात करने जा रहा हूँ ना, उसने कभी दुनिया पे राज करने की कोशिश नहीं की, ना सीक्रेट आइलैंड बनाया, ना एक क्रोकोडाइल पाला, ना मशीन गन उठाई। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन रियल लाइफ में, पतियों की लाइफ में थोड़ा बहुत विलेन तो है भाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान साहब की। नहीं नहीं, डर मूवी नहीं, अंजाम मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी नॉर्मल सुपरहिट रोमांटिक मूवीज की बात कर रहा हूँ भाई। फिल्मों में ही नहीं, रियल लाइफ में एक्सपेक्टेशंस ही उन्होंने बढ़ा दी। 90s में शाहरुख खान साहब ने रोमांस का जो सिलेबस लिखा ना, उसका एग्जाम आज तक हम पति लोग दे रहे हैं यार। बारिश में डांस करो, ट्रेन को पकड़ो एक हाथ में लेके, बाहों में घुमाओ, आंखों में आंखें डालकर स्पीचें दो, और हर एनिवर्सरी पे एक सरप्राइज प्लान करो। भाई इतनी एनर्जी लाए कहाँ से? वो याद है मुझे, कुछ कुछ होता है पूरी कॉलेज में, राहुल ऐसा है, राहुल वैसा है, राहुल इज सो क्यूट। अरे बहन ये तो देख, पूरी मूवी के अंदर शाहरुख खान ने जीते हैं एक बार, प्यार करते हैं एक बार, शादी करते हैं एक बार, और एंड में जाके दो शादियां कर ली। वो किसी को नहीं दिख रहा है, वो दिख रहा है कि भैया रिस्पेक्ट में तीन ही औरतों के आके वो अपनी सर झुकाते हैं और तिच्छे बास्केटबॉल खेलते हैं और हाथों में तालियां से मारते हैं, ऐसे क्यूट क्यों नहीं बनते भाई? देखो तो और भी क्या रहा है, कितने उसके एम्बिगुअस फैसले करें पूरी मूवी के अंदर। बट ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, शाहरुख खान शाहरुख खान साहब हैं, हम पति हैं, उनको तो चाहिए कि शाहरुख खान जो है सुबह सुबह यू नो लाइक फूल लाए ये लाए, हम जो होते हैं हम दूध ला रहे होते हैं, सिलेंडर भरवा रहे होते हैं, कार में पेट्रोल डलवा रहे होते हैं, जिंदगी चल रही है। बट एनीवेज, यू गॉट द पॉइंट। आई होप कि कुछ लोग मेरे साथ इसमें हो, और कुछ लोग आई नो जो फैन है, स्पेशली लड़कियां, भाई मैं कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली मैं कर रहा हूं, बट जो है सो है, राइट? चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, इससे पहले कि मैं पिट जाऊं।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: Mike here at Auto Park Con and Carry, where we keep it simple. You get the Honda you want at a price you'll love, all with no games and no gimmicks. Get real value with every new Honda purchase, like no cost oil changes, loaner cars, and free towing. It's how we've saved our customers thousands for over a decade. So forget the games and drive happy with a team that puts your needs first. Auto Park Honda and Carry and AutoParkHonda.com. It's easier here.
2: Visit AutoParkHonda.com for details.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
4: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
5: भाई साहब कितने ऐड, आई नो आप भी सेम चीज़ सोच रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा हूँ, बट हम बस सोच ही सकते हैं क्योंकि भाई पापी पेट का सवाल है, ऐड करने पड़ते हैं। एनीवेज दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विलेंस की। तो कुछ विलेंस ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम बोलते हैं वाह क्या विलेन है, और कुछ विलेन ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम बोलते हैं भाई मूवी बंद करते हैं, रात को नींद नहीं आएगी। 90s के एंड में एक ऐसे विलेन आए थे जिसने विलेन का पूरा ही मूड तख्ता पलट कर दिया था। ना कोई फैंसी सूट, ना कोई फैंसी महल, ना कोई फनी डायलॉग, बस एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, आंखों में एक दर्द, जैसे वो खुद ही अपने दिमाग से थोड़ा खुद डर रहा हो। कौन था? नाम था लज्जा शंकर पांडे, आशुतोष राणा। भाई वो विलन था जिसके सामने हीरो भी सोचता था भाई थोड़ा एसी को दे दो, मैं थोड़ा एंड में आऊंगा, पिक्चर थोड़ी खत्म हो जाए, मुझसे नहीं हो पाएगा। बाकी विलन के पास स्टाइल था, मोगैम्बो के पास एम्पायर था, शकाल के पास आइलैंड था, गोगो के पास फैशन सेंस था, ह्यूमर भी था, और लज्जा शंकर के पास भाई एक चीज थी, कॉन्फिडेंस लेवल अनलिमिटेड। और सबसे खतरनाक बात, वो चिल्लाता नहीं था, वो ऐसे एक्चुअली चिल्लाया भी था, वो याद है वो सीन, वो साड़ी पहन के मुंह से उसके होठों से खून निकल रहा है, वो कर रहा, खतरनाक सीन था डूड, डेडली सीन था यार वो। लेकिन मोस्ट ऑफ द मूवीज के अंदर वो आराम से बात करता था, और कभी कभी जो आदमी धीरे बोलता है ना वही सबसे ज्यादा डरा देता है। जैसे घर में जब कोई बोले ठीक है बाद में बात करते हैं, तो समझ लो बॉस प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है। तो आशुतोष राणा साहब ने ऐसा विलेन बनाया कि लोग एक्टर को देखकर भी कैरेक्टर याद करने लग गए। ये एक्टिंग की वो कैटेगरी थी जहां एक्टर को देखकर मन करता था बोलने का, भाई आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन स्क्रीन पे ना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। भाई गजब मूवी थी संघर्ष, देखिए आप लोगों ने, अक्षय कुमार भी थे उसके अंदर, पीटी जिंटा अगर याद ना हो, आई एम श्योर काफी लोगों को बस वो मूवी याद होगी तो सिर्फ लज्जा शंकर पांडे की वजह से। बनता भी है यार, गजब एक्टिंग थी, डर था, खौफ था यार। वेल, अगला गाना जो बजाने वाला हूं बड़ा प्यारा गाना है, आई होप ये मेरा, मतलब ऑफकोर्स इट्स नॉट लाइक कि मेरा एक्वायर्ड टेस्ट वाला प्यारा गाना है, ये काफी लोगों को प्यारा गाना लगेगा, बट प्रॉब्लम ये है ना, ये वाले जो गाने थे ना ये वो गाने थे जिसके अंदर पूरी वेब सीरीज बना दें, 7 मिनट के गाने, 8 मिनट के गाने, बट ठीक है ये गाना प्यारा है तो सुनते हैं, और आई एम श्योर गाने की शुरुआत के 1 सेकंड में ही लोग मुस्कुरा देंगे और कहेंगे अरे आई नो दिस सॉन्ग। तो चलिए दिमागों को लगाते हैं ताले और गाना सुनते हैं, आई गेस इट मेक्स सेंस।

0: ಸುದ್ದ ರೇಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋ ನಾರ 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM ಪಕ್ಕಾ ದೇಸಿ ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್.
1: ऑलराइट, तो पिछला गाना मैंने ऐसे ही काट दिया क्योंकि मुझे लगा वो बहुत अच्छा लगा था मुझे फर्स्ट लाइन के अंदर, बट देन आई रियलाइज्ड ओके इतना अच्छा भी नहीं है, वैसे ही मुझे लोग जज कर रहे होंगे. तो दोस्तों, आज की महफिल में हमने बहुत सारे चेहरे याद किए, कुछ से हम डरे, कुछ पर हम हंसे और कुछ को देखकर बस इतना लगा यार क्या जमाना था. 90 और पुरानी फिल्मों के विलेन की एक अलग ही बात थी, वो सिर्फ हीरो के रास्ते रुकावट नहीं होते थे, वो कहानी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते थे. उनकी एंट्री का इंतजार होता था, उनके डायलॉग्स याद रहते थे और कभी कभी तो विलेन के बिना पिक्चर अधूरी लगती थी. किसी के पास दुनिया जीतने का प्लान था, किसी के पास अजीबोगरीब फैशन था, किसी के पास गुस्सा था और किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस कि पूरी दुनिया को चैलेंज कर दे. लेकिन एक बात सब में कॉमन थी, उन्होंने हमें एंटरटेन किया, उन्होंने हमें यादें दी और बचपन के वो दिन वापस ले आए जब मूवीज देखना सिर्फ मूवी देखना नहीं होता था, एक एक्सपीरियंस होता था, एक ट्रेडिशन होता था, फैमिली के साथ बैठना होता था, बीच में स्नैक्स का डब्बा और विलेन के आते ही सबका चुप हो जाना होता था. आज हमने विलेन को थोड़ा अलग नजरिए से भी देखा, शाहरुख खान को भी विलेन बना दिया क्योंकि कभी कभी जो स्क्रीन पर बुरे होते हैं वही यादों में सबसे अच्छे बन जाते हैं. और शायद शायद इसीलिए कुछ कैरेक्टर्स कभी खत्म नहीं होते, वो फिल्में खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहती हैं. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आप अपनी पुरानी यादों को संभाल कर रखिए, पुरानी फिल्में देखिए और कभी कभी उन विलेंस को भी याद कीजिए जिन्होंने हमें हंसाया, डराया और एंटरटेन किया. मैं था आपका दोस्त, अभी भी हूँ दोस्त, अर्पित, और आप सुन रहे थे इधर उधर की बातें. मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, नई कहानियों के साथ और थोड़ी और इधर उधर बातों के साथ. बाय बाय.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: You're listening to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: गुड इवनिंग रैली धर्म एंड मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सुन रहे हैं रेडियो नारापन निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। कैसे चल रही है आपकी आज वेनसडे की शाम? 7 से 10 में रहूंगा आपके साथ, मिटाऊंगा आपका स्ट्रेस एंड बनाऊंगा आपके मूड को और भी रिफ्रेश। उम्मीद है आप सबका ये वेनसडे यानी बुधवार बहुत ही शानदार रहा होगा। जो लोग अभी अभी गाड़ियां स्टार्ट कर चुके हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की सबसे बड़ी और गर्व करने वाली लोकल खबर यह है कि रैली को नॉर्थ कैरोलिना का सबसे बड़ा शहर घोषित किया गया है और पूरे अमेरिका में 15th नंबर पर हमारा ये शहर है। तो बॉस, प्राउड फील कीजिए कि आप इतने बेहतरीन शहर में रह रहे हैं। अगले 3 घंटे आपके सफर को म्यूजिकल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है एंड सुनते हैं इस ब्यूटीफुल शाम का ये पहला गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने, गाना गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। अगर आप इस वक्त i40 इस पर है तो भाई थोड़ा धीमे। कल रात सेंट्रल नॉर्थ कैरोलिना में जो भयानक तूफान बवंडर और बिजली कड़की है उसकी वजह से ट्राइंगल एरिया में कई जगह पर पेड़ गिरे हैं और रोड को क्लियर करने के काम चल रहे हैं। ड्यूक एनर्जी की टीम्स अभी भी हजारों घरों की पावर रिस्टोर करने में जुटी है। धर्म में तो कुछ गाड़ियां बाढ़ के पानी में फंस गई थी जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो सड़कों पर गिरे मलबे और ट्रैफिक से सावधान रहिएगा। जाम में फंसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक सेफ डिस्टेंस तय करना है आपको अगली गाड़ी के साथ और जो टॉक्सिक लोग आपके लाइफ में है उनके साथ भी। गाड़ी का एसी ऑन करो और सुनो इस मजेदार गाने को। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,

0: आपने एंजॉय किया ये गाना जो था वाकई में आज के दिन की वाइब सेट करने के लिए फायदेमंद है। लैपटॉप शटडाउन करके जो लोग मॉरिसविल और कैरी की बड़ी टेक कंपनियों से निकल रहे हैं, लॉग आउट मतलब लॉग आउट। अब कॉर्पोरेट मेल्स को सुबह तक के लिए भूल जाइए, बाहर आसमान की तरफ देख रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज वेस्ट कोस्ट के जंगलों की आग धुएं की वजह से आसमान में हल्की सी धुंध यानी हेज दिख रही है, लेकिन परेशान मत होइए, कल और परसों शानदार धूप खिलने वाली है। तो भाई इस मिड वीक थकावट को दिमाग से निकालो और गाड़ी की स्टीयरिंग को थाम कर इस वाइब को महसूस करो, क्योंकि मौसम वाकई में काफी अच्छा है। वेनसडे है या फिर थर्सडे, एंड देन आप सभी का चहिता वीकेंड हमें देखने को मिलेगा। और एंजॉय करते हैं अगला ये गाना जो कि वाकई में आपको मूड को करने वाला है रिफ्रेश।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

एंजॉय किया आपने गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माणा नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। लोग अक्सर मंडे या ट्यूसडे ब्लूज की बात करते हैं, लेकिन हफ्ते के बीच में आकर जब इंसान थक जाता है तो उसे कुछ रूहानी सुकून चाहिए होता है। ऐसे में आपके मूड को शायराना अंदाज में बूस्ट करने के लिए एक शेर अर्ज है। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। जी हाँ, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। जिंदगी के इस ट्रैफिक और सफर का नाम तो चलना ही है दोस्तों। तो चलिए इस हसीन शाम को और खूबसूरत बनाते हैं इस गाने के साथ। एंड चलना चाहिए यार, है ना। चलते रहो चलते रहो, एक दिन तो मंजिल मिल ही जाएगी। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। रात के जो है वो 8 बज रहे हैं और अब वक्त हो चुका है बॉलीवुड की कुछ खबरें जान लेने का। तो बॉलीवुड की गलियारों से पहली खबर आ रही है कि रामायण के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज ने पूरे 75 करोड़ में खरीद लिए है। यस, किसी भी हिंदी फिल्म की अब तक की ये सबसे बड़ी ऑडियो डील है। और हाँ, मेकर्स ने ये भी कंफर्म किया है कि फिल्म का
1: You're listening to W